0: और जब ये लोग सौदा बिकता या तमाशा होता देखते हैं तो उधर भाग जाते हैं और तुम्हें खड़े का खड़ा छोड़ जाते हैं। कह दो कि जो चीज अल्लाह के यहाँ है वो तमाशे और सौदे से कहीं बेहतर है और अल्लाह सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
0: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
1: इज़ा

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?

और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा उसके लिए दो बाग हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उनमें दो चश्मे बह रहे हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उनमें सब मेवे दो दो किस्म के हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

Well,

0: station of the nation.
1: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
2: टूट जाते हैं दिल इश्क के दरबारों में, लौट जाते हैं आशिक दरों में. सुना है ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, शायद हम भी मिल जाए तुम्हें एक दिन टूटे हुए सितारों में.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।

0: This is
1: तेरह जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सोचिए जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे, लाहौर जहाँ हर गली में एक कहानी है लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
2: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: This is
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून, अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।

te. Red One, Mr. Worldwide, I may shock you.

0: था। मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
4: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून, अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही 2 बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: This is
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान चीन के सूबे हीजियांग के साथ मुख्तलिफ शोबों में तआवुन मुस्तहकम करने को इंतहाई अहमियत देता है। शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को कयाम अमन की उनकी गैर मामूली कोशिशों पर मुबारकबाद दी है। ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात में सहूलत कारी और इलाकाई मसाइल के पुरान हल के फरोग के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, कोयटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबाउट एफएम 101.1।
2: The latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: We'll be back after this short commercial break.
1: संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल एफएम 101।
2: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
3: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
2: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
4: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
5: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
4: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
6: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
2: हालत देखो अपनी,

0: कुछ नॉर्मल नहीं होता और यही बात।
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।

FM 101 naal naal sade te naal naal tuade. Kyun ji koi shak hai kya?

मिल दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजर सानी करो जरा सी, कदर करो मेरी कला की,

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

मुझे बात यू ही मैंने बना रखी है, बना रखी है।

0: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: सुनते रहिए FM 101, 101।

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम आज चीन के शहर हांगझो में मसरूफ दिन गुजारेंगे। शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को कयाम अमन की उनकी गैर मामूली कोशिशों पर मुबारकबाद दी है। वजीर मसीबी उमूर ने मनाजिक हज के दौरान पाकिस्तानी आजमीन को सहूलतें फ्राहम करने के हुकूमती अज़्म का इरादा किया है।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: be back after this short commercial break.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: दिन के 12 बजे हैं, अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है, सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम आज चीन के शहर हांगझो में मसरूफ दिन गुजारेंगे। नायब वजीर आजम ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन की खातिर तमाम मुखलिसाना कोशिशों की मुकम्मल हिमायत के लिए पुरअज़्म है। वजीर मजहबी उमूर ने मनासिक हज के दौरान पाकिस्तानी आजमीन को सहूलतें फ्राहम करने की हुकूमती अज़्म का इआदा किया है। लबनान में ताज़ा इसराइली फजाई हमलों में 20 अफराद जान बहक हो गए हैं।
2: This is FM 101.
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: There's only one station that keeps you moving. Hot Wired Radio. Today's best music. Q101. Electric.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
3: मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: You're listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: I'm on the way, बस आधा घंटा दे।
7: चल फिट जल्दी कर।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: FM 101 नाल नाल साडे ते नाल नाल तुवाडे, क्यों जी कोई शक है क्या?

this music, and then this magic. One Above FM 101.

0: This is FM 101, where your spirit is set free.
1: 101 FM.

0: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
1: दिस इज एफएम 101।
2: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.
1: Shukriya. आपने FM 101 ट्यून किया।
2: I love FM 101.

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
4: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
6: I love FM 101.

वेलकम बैक, वेलकम बैक। प्रोग्राम सुन रहे हो रावी किनारे, तोड़ा बिरा, तोड़ा सज्जन, तोड़ा बेली अरजे गुलाम ली जावेद, तोड़े नाल है तोड़े अपने फैमिली चैनल FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर दे स्टूडियो तो। बदलता मौसम है और बदलते मौसम दे विच बहुत सारे लोग जड़े ने बेएहतियाती करते हैं, खास करके बर्फ के गोले बच्चे खाते हैं, फिर गले पक जाते हैं, जदों गले पक जाते हैं तो काफ़ी परेशानी बनती है वालदेन वास्ते भी, तो बच्चों वास्ते भी। जरा एहतियात करो कि जड़ियाँ गंदियाँ कुल्फियाँ और गोले और बर्फ और ठंडे पानी और गंदे मशरूब जड़े साफ नहीं होंगे उन्हां तो खुद भी बचो तो बच्चों भी बचाओ। तो नाल एक काम होर करया, गर्मी बड़ी ने, धुप बड़ी ही ने, तो पम दी इंजन बालों तो बुढ़िया भी छड़ गल दियो। गैर जरूरी तौर पर तो बाहर कोई ना निकलो, तो जो मजबूरी होवे निकलना होवे तो मुड़े नहीं किता करो ना, सिर ते कोई पगड़ा कपड़ा टोपी काशा रख ली ताकि गर्मी जड़ी ना सिर आलू ना लगे, सिर आलू गर्मी लगे तो बंदे नूं लै जांदी है। जमाल भाई साडा प्रोग्राम सुनते पे ने, जमाल भाई थैंक यू सो मच, तुसीं प्रोग्राम दे विच शामिल होए, अच्छा लगा, मेहरबानी।

लो जी इकराम एक दफ़ा इस्लामाबाद तो प्रोग्राम दे विच शामिल होने। इकराम भाई थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बड़िया मेहरबानियाँ। मियाँ फारूक साडा प्रोग्राम सुनते पे ने, फारूक भाई थोड़ी मेहरबानी, तुसी प्रोग्राम दे विच शामिल हो। इस तो इलावा अतीक साडा प्रोग्राम सुन रहे हैं राजगढ़ तो, मज़र प्रोग्राम सुनते पे ने राजगढ़ तो, अली चैंपियन साडा प्रोग्राम सुनते पे ने, इन्हां दा बहुत शुक्रिया, बड़िया मेहरबानियाँ। लो जी रिमशा प्रोग्राम सुन दिया पे, रिमशा प्रोग्राम दे विच शामिल हुई ने, मेहरबानियां। शाजिया ने प्रोग्राम सुनया, प्रोग्राम दे विच शामिल होए ने। शाजिया जी थैंक यू सो मच, तुसी प्रोग्राम दे विच शामिल होए, अच्छा लगा, उम्मीद करदा कहिंदा भी प्रोग्राम दे विच आंदे रहोगे और मेरे प्रोग्राम दे विच आके मेरा माण वधांदे रहोगे। और एक दिन होसी मैं तैनू याद आसा, क्यों जी

0: वासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर महकमा सेहत आबादी हुकूमत पंजाब
1: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया

0: 10 साल ही कुर्बानी आप देते रहे अपनी तरफ से भी और उम्मत की तरफ से भी और अपने घर वालों की तरफ से भी। ये जो पहला अशरा ज़िलहज का होता है, तमाम इबादत के दिनों की इबादत अफजल है और हर दिन का रोजा साल के रोजों के बराबर है। इसकी हर रात का क्याम लैलतुल कद्र के बराबर है। हजरत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके वसाल के बाद भी आपके हुक्म के मुताबिक हर साल आपके नाम की कुर्बानी गाय बकरे की देते थे। और इसमें और गाय है, ऊंट है, कीका भी किया जा सकता है। और किन पर कुर्बानी वाजिब है? मुसलमान, मालदार, आजाद और मुकीम पर। हाँ, बकरा हो एक साल और उम्र उसकी, गाय हो दो साल की उम्र हो, ऊंट है 5 साल की उम्र में, भेड़ का 6 माह का भी बच्चा चलेगा। हाँ, अगर किसी मैयत के नाम की कुर्बानी देनी है तो गोश्त सारा बांटना होगा। हाँ, बुजुर्गों के, साहबा कराम के नाम की भी दी जा सकती है। पैसे नहीं दिए जा सकते, कुर्बानी नहीं कबूल होगी। पैसे दे के तो कुर्बानी के पैसे दे दिए, कुर्बानी नहीं कबूल, हरगिज नहीं शरीयत कबूल करती। रात को कुर्बानी नहीं देते, सूरज गुरूब होने से पहले पहले तीनों दिन देनी है, 10, 11, 12 तारीख जो चांद की है। हिस्सा का वजन करना जायज़ है, बकरी गाय ऊँट तमाम खसी गैर खसी नर मादा सब जायज़ हैं। हाँ, तो ये जब तक जानवर ठंडा ना हो जाए उसको हाथ नहीं लगाना, उसको उसकी खाल नहीं उतारनी। हाँ, इस तरह से इसके एहतराम है उस जानवर का भी। हाँ, ईद को रोज़ा नहीं होता, बस ये आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप मीठी ईद पे खा कर जाया करते थे मीठा, और जब बड़ी ईद आती थी तो उस दिन आके आप कुर्बानी के गोश्त से अपना खाना खोलते थे। ये रोज़ा नहीं कहलाता। हाँ, जानवर को जब भी लिटाएं बाएं पहलू पर इस तरह लिटाएं कि किबला रुख मुंह हो जाए। हाँ, और अपना दाहिना पाँव उसके पहलू पर रखें, तेज छुरी से जल्द ज़बह करें और खाल इसकी सदके में दे देनी चाहिए। इसके 3 हिस्से करने चाहिए, एक हिस्सा फकरा को, दूसरा दोस्त अहबाब को, तीसरा अपने घर वालों के लिए। वाखर दावाना अनिलहमदिल्ला रबील आलमी वसलात वसलाम लेके या खातम।
1: दिस इज FM 101।
2: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
3: फिर वही बात, पहले ही 2 बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
2: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
4: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
5: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
4: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
6: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
7: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: पापा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: सुर और संगीत साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: after this short commercial break. Stay with us.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: सुर और संगीत साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

बतेचे दिल का मकी दुश्मने थी साथ मगर कोई नहीं। धक से हुआ दिल के ये इस वक्त कहा, उससे जो पूछा के बता खैर तो है क्यों इधर आया, तो जवाब उसने दिया हंस के यूं ही, तुझे क्या काम जो तू पूछ रहा है कोई।

0: सटा कासा। अरे तो बा, अरे तो बा, चलो बैठे रहो, बातें न बनाओ। तुम यूं ही मुझसे ये कहते थे तुम्हें हमसे मोहब्बत है। हटो जाओ मोहब्बत का भला नाम डुबोया, हटो जाओ मोहब्बत का भला नाम डुबोया, हटो जाओ मोहब्बत का भला नाम डुबोया।
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: सुर और संगीत साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: सुर और संगीत साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: सुर और संगीत साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: सुर और संगीत साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: सुर और संगीत साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: This is FM 101.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
3: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
2: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
4: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
5: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
4: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
6: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
7: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: सुर और संगीत साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
7: They say move on, like it's that easy.

0: Yeah. Maybe one day I'll let go. But today's not that day.
1: सरोर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक, जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक,

0: वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे चीन के दूसरे मरहले में बेजिंग आमद। बेजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर चीन के वज़ीर माहौलियात हुआंग रुनचू ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बेजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग समेत आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। सी पैक फेज टू के तहत तिजारत, सरमायाकारी,
1: सिक्योरिटी फोर्सेज को अमन अमान के क़याम की कोशिशों में मुकम्मल तआवुन का यकीन दिलाया गया। चीन के शहर पानजिंगहुआ में एशियन जूनियर इंफरादी स्क्वैश चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2 तलाई, 1 चांदी और 2 कांसे के तमगे हासिल किए हैं।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ़ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बे फॉर्म, शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
2: आपा, मैंने सुना है खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
3: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
2: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
4: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
5: खानदानी मंसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
4: सोच को आजाद करो, खानदानी मंसूबा बंदी को आम करो।
6: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहाँ हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आँखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आँखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
7: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

तू मुझसे इतना दूर है, अब कर लिया कबूल है, अंदर से तू भी जानती तेरे तेरे होने को है, पर तू जाने में मजबूर हूँ, मैं तेरा मशकूर हूँ, तू समझे मुझे अभी, तू जैसे कोई नूर है, कोई नूर है तू, एक फितूर है तू, इतने फासले पर फिर भी कुछ सुकून सा है तू।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी। सोचो कभी मैं ये किसे कहूँ, आता नहीं मेरे दिल को सुकून। दुनिया झूठी, दुनिया वाले है fake, उनके बारे में मेरा है take। I don't care what you think, what you're emotional।

मैं थक सा गया और चुप हो गया, मैं थक सा गया और चुप हो गया, मैं थक सा गया और चुप हो गया, मैं थक सा।

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई हस्पताल का साथ। किसी की ज़िंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मज़ीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विज़िट करें www.alshifaeye.org।
1: FM 101 नाल नाल साडे ते नाल नाल तुवाडे। क्यों जी, ये कोई शक है क्या?
0: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
2: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
3: फिर वही बात, पहले ही 2 बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
2: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
4: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
5: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
6: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
7: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
8: FM 101 नाल नाल साडे ते नाल नाल तुवाडे। क्यों जी, कोई शक है क्या?

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
4: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
2: 13 June. पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की ज़िंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मज़ीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विज़िट करें www.alshifaeye.org.
3: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं.
4: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी.
3: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं.
5: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती. मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता.
6: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है. खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं.
5: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो.
7: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब.
2: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.
3: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं.
4: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी.
3: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं.
5: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती. मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता.
6: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है. खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं.
5: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो.
7: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: this music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

जान तो न था, इस घर का फर्द था कोई मेहमान तो न था, थी जिनके दम से रोंगटे शहरों में जा बसे।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: था। मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, मेरे ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत
3: पंजाब।
0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, मेरे ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: Station for Civilization 101 Hits FM.

Alright, assalamualaikum, assalamualaikum to all of you. Welcome to the station that is Sound of the Music. I'm Kamez Ban Muhammad Yusuf, all the way live from the federal capital city of Pakistan, the beautiful, beautiful, beautiful Islamabad. Lahore, Karachi, Islamabad, Faisalabad, Quetta, Peshawar, Hyderabad, Sialkot, Multan, yani ki pura Pakistan aur Pakistan se bahar puri duniya mein radio.gov.pk par aap sun rahe hain Shining Frequency FM 101 ki. और एफएम 101 के अलावा स्टूडियो से मैं आपके साथ आपके मेजबान मोहम्मद यूसुफ ठीक रात के 12 बजे तक आपका मेरा साथ रहेगा। उम्मीद करते हैं कि तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे, जहां कहीं भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज अमान में होंगे। 24 मई साल 2026 और इतवार की खूबसूरत शब आप लोगों के साथ बिताने के लिए मौजूद है एफएम 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। उम्मीद है कि तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे, जहां कहीं भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे। एक नया दिन, एक नई तारीख, एक नई एपिसोड के साथ आप लोगों के साथ साथ मौजूद हैं। वजीराबाद से लेकर कश्मीर, अनबियार, इस्लामाबाद स्टेशन, टेरिटरी और पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जहां जहां तक हमारी आवाज सुनी जा रही है, सबको वेलकम करेंगे। हमेशा की तरह पहला सॉन्ग, पहला गाना प्यारे वतन पाकिस्तान के नाम। जहां तक हो सके पाकिस्तान की तरक्की में अपना मजबूत किरदार अदा कीजिए। बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी एंड प्राउड टू बी पाकिस्तानी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101 हिट्स एफएम लाइव फ्रॉम द फेडरल कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान।

0: दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान। The pride of Pakistan, Ustad Nusrat Fateh Ali Khan.
1: Say, deed ki khatir.

ऐसे चार्ज हम जो बातचीत करेंगे आप लोगों से, गपशप लगाएंगे, वो टोटली बेस्ड होगी, क्योंकि ईद कुर्बान नज़दीक है और हर इंसान जो इस वक्त मौजूद है और दुनिया भर में ऐसी ही सिचुएशन है, लेकिन हमारे यहाँ सिचुएशन को है बिगड़ने शुरू हो जाती है सम टाइम। लोग सियाने भी बहुत हो गए ना। मंडियों के क्या रुझान है? आप लोगों ने कोई कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा है या मेरी तरह अभी तक इंतजार कर रहे हैं? बेवजह के रेट्स हैं जो बताए जाते हैं ना। मैंने कल विजिट किया एक, मुझे लगता है मंडी में भी लोग मेरे फैन हैं, मुझे सुनने वाले जो हैं, मुझे अचानक मैंने विजिट किया और उधर घर के पास ही एक मंडी थी, तो मैंने कहा चलो ये चलते हैं, आइडिया हो जाएगा कि क्या रेट्स चल रहे हैं आजकल। मतलब मुंह नहीं दुखदा थोड़ा, 6 लाख। अब तुमने सिखाया कि नहीं है? तो क्या इरादे हैं आपके कुर्बानी के हवाले से? जिन लोगों ने खरीदारी कर ली है, कोई जानवर वगैरह खरीद लिया, उनके लिए तो बड़ी ही अच्छी बात है, जानवर आप लोगों ने ये काम कर ली। जो लोग अभी तक इंतजार में, उनके लिए क्या मशवरा देंगे?

इस वक्त के साथ इस वक्त 10:19 और जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया कि विजिट जो मैंने किया है उसमें ये चीज मैंने देखी कि मोस्टली लोग जो है वो कंबाइन जो है वो इज्तिमाई कुर्बानी जो है उसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे में मतलब जो मेरा माइंड जा रहा था, और क्योंकि मेरे दोस्त जो है वो भी सुन रहे होते हैं, जो लोग मुझे वैसे जानते हैं उनको भी पता है कि अभी हलालम के तो इतना मुझे आइडिया, अगर आप गोश्त की रेशो भी लगाए ना तो मतलब बकरा हो गया, दुम्बा हो गया, हार्डली कितना उसका वजन होता है, 2 लाख रुपया, 1,50,000 रुपये, तो बात करने वाली करनी चाहिए ना। इसके पीछे मकसद क्या, हम किस मकसद के लिए जो है वो ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम शायद वो मकसद भूल चुके हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ इसको कारोबार की हद तक ही जो है वो लेके चल रहे हैं, सहूलतें जो है वो नहीं पैदा कर रहे लोगों के लिए। ओके वेलकम, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। वो लाइन में भूल गया, क्या कहा था आपने जी, सही फरमाया। Can you repeat this?

जिंदगी खूबसूरत पलों में एक पल वो भी होता है कि जब आप पास होते हैं, ये सबसे मेन चीज है जिंदगी में। हाँ जहाँ मैं फैन की बात कर रहा था अचानक से, मैं वैसे मास्क वगैरह पहना था लेकिन गर्मी है और मतलब बंदों की वजह से इतना जो है वहाँ पे अब्स हो जाता है, फिर तो जानवर और मतलब आपका हादसा क्यों निकल रहा है।

और मैं बिल्कुल कैजुअल सी ड्रेसिंग में जो है वो जाता हूँ, और ऑफिस से जब मैं घर आके बिल्कुल ही ट्राउजर शर्ट होती है एक स्पोर्ट्स वाली, और उसी में ही ऐसे में चला क्या, फिर अचानक से मेरे कंधे पे किसी ने ऐसे आके हाथ रख लिया। मैंने कहा सर इतनी ब्राइटनेस किसके

कहते मैंने आपको कहीं देखा है। मैंने कहा तस्वीर तो वैसे मैंने कहा था नहीं, एकदम से मेरे माइंड में रेडियो ही आ गया। मैंने कहा मैंने भी यहाँ पे एक जो है वो बड़ा सा लगाया हुआ है। तो कहते हैं आपकी इस जोक से ही मुझे आइडिया हो गया कि आप यूसुफ हैं। तो मैं भारत को की बात कर रहा हूँ और बिल्कुल जी अभी वहीं पे रह रहे हैं और काफी सारे मुझे अपनी ही गली में 3 से 4 ऐसे लोग मिले हैं, मतलब पूरे फैन हैं। एक तो बाबा जी हैं, वो डेली सुबह ना जब मैं ऑफिस से निकलने लगता हूँ तो उस वक्त अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप,

तो आज हम थोड़े से गपशप लगाएंगे, थोड़ा सा फन भी करेंगे, आज हम बार्गेनिंग करेंगे लाइव और आप लोग आएंगे, गपशप लगाएंगे, देखते हैं कौन सा कैरेक्टर कौन जो है वो अच्छा बखूबी जो है वो निभा सकता है। एक साइड पे होंगे सेलर और एक साइड पे होंगे बायर, खरीदार और जो बेचने वाला, उसके दरमियान क्या कन्वर्सेशन होती है, क्या गपशप होती है, किस तरह आप वो क्या कहते हैं कि घेरते हैं। और मोस्टली जो लोग ये सेलिंग वाला काम करते हैं उनको आइडिया हो जाता है कि किस बंदे ने खरीदना है, या कि फिर अब इसको विंडो शॉपिंग में नहीं कह सकते सिर्फ देखने के लिए मंडी का विजिट किया है मेरी तरह।

तो आपसे हम गपशप लगाएंगे इसी हवाले से, और ईद की मुनासबत से हम देखेंगे कि आप क्या कहते हैं। ईद के दिन ना सही, खैर सही, ईद के बाद हमने तो ईद मनानी है तेरी दीद के बाद।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: दिस इज FM 101।
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी।

0: We'll be back after the short commercial break.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: This is FM 101, where your spirit is set free.
7: 101 FM.
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
8: स्टेशन फॉर सिविलाइजेशन 101 हिट्स एफएम।
9: हियर इज मोरक्कन यू बेबी, चेक दिस आउट।
10: या यस सलाम।
9: You feel me, baby? Spread love. Yes, salam alaikum. Yeah.

So जी देखते हैं कौन है कहां से है। 051-111-001-092-02-54-0 हमारा कॉलिंग नंबर है। facebook.com/fm101channel पाकिस्तान के ऑफिशियली पेज पे आप लोगों के कमेंट्स और 4471 पर SMS।

ये बड़ा इश्क, इश्क तो करना है, क्यों करना है इश्क? हुस्न यूसुफ जैसा हो या सूरत बिलाल जैसी, इश्क अगर रूह से हो तो हर रूप कमाल होता है।

जहाँ पे नजरों की बात है, तो नजरें मिली तो बात नहीं कर सकूंगा मैं, नजरें मिली तो बात नहीं कर सकूंगा मैं, दो काम एक साथ नहीं कर सकूंगा मैं।

ही देखी जा रहे हैं। जिशान वहां से हंस रहे हैं। इतनी पतली आवाज में जाना पड़ता है।

दस बजकर 56 मिनट हुआ चाहते हैं सामीन और आपका मेरा साथ है इस प्रोग्राम में ठीक रात के 12 बजे तक। आते हैं सॉन्ग ब्रेक और न्यूज हेडलाइंस के बाद। जस्ट इन केस यू फॉरगॉट, माय नेम इज मोहम्मद यूसुफ।

0: रात के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के दरमियान कारोबारी सतह पर तआवुन की अहमियत पर जोर दिया है। पाकिस्तान और अलीबाबा ग्रुप के दरमियान मुफाहमत की कई याददाश्तों और वसी फ्रेमवर्क के माहदे पर दस्तखत किए गए हैं। बन्नू और शिमाली वज़ीरिस्तान के अजला में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 27 ख्वारिज दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1
2: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू एफएम 101 द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: We'll be back after the short commercial break.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: Station for Civilization 101 Hits FM.
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: दिस इज FM 101, where your spirit is set free. 101.

आया, मैं भी आया। हबीबी आना क्या है नहीं आना, हबीबी हबीबी वेलकम करते हैं आपको और आप लोगों के फेसबुक के कमेंट्स जो हैं वो शामिल करते हैं जी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और कहा तो है जी, लोग अब पता नहीं क्यों इस तरह की जो है वो बातें शुरू कर देते हैं, तो कोशिश करते हैं लोगों को समझाया तो है, साथ देने हैं। हाँ, हर कोई थोड़ा जरा समझदार थोड़ी है कि भाई गल कितना करनी है।

काफी जी कमेंट्स हैं और किंग मोहम्मद आमिर बिग फैन, थैंक यू सो मच. हामिद चांद है, वेलकम टू द फैमिली शो. वी आर चांद फैमिली, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का. फयाज चांद, हामिद चांद, महमूद चांद, फरंगी नंबर टू कराची, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. बरकत जमाली बलोच, अली हसन जमाली बलोच गांव, हाजी गुलाम नबी खान जमाली बलोचिस्तान, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया.

आपकी प्लेलिस्ट जो है बहुत अमेजिंग होती है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा म्यूजिक जो है वो लेके आया करें, ताकि आप लोग गपशप के साथ साथ अच्छे से अच्छा म्यूजिक भी सुन सकें।

वैसे जिस तरह मौसम इतना ज़्यादा गर्म हुआ ना, तो मैं वैसे दुआ तो है और प्रेडिक्शन भी है कि प्रेडिक्शन यही है कि बारिश जो है वो हो सकती है। और आई थिंक कल से बताया गया बारिशों का, कम से कम एक दो दिन जो है वो हो जाए जिससे मौसम जो है वो थोड़ा सा ईद तक अच्छा हो जाए। बारिश से रिलेटेड ही एक सॉन्ग है इस गर्म गर्म मौसम में, आप बारिश एंजॉय करें।

0: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: FM 101 naal naal sade te naal naal tuade kyun ji koi shak hai kya

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: There's music and then there's magic.

हो गया, क्या हो गया, मुक गया। अमीर बंदा भाई, चटियां बोतल रखिया है आजकल तो। ये वैसे बड़ा ट्रेंड चल गया, वो जो टेम्परेचर सॉन्ग, क्या कहते हैं, कंट्रोल करने सॉन्ग।

0: ऐसे कुछ कॉल्स शामिल करते हैं 0511111001 पर 11:30 के ब्रेक के बाद जो है सेगमेंट में हम कॉल शामिल नहीं कर पाएंगे। सो आप लोग कॉल कर सकते हैं 0511111001 पर और आप लोगों की कॉल्स को मैं शामिल करूंगा। ईद के हवाले से हम नॉर्मली गपशप लगाएंगे आप लोगों के साथ। सर जी देखते हैं कौन है, कहाँ से है हमारे साथ और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से तारफ करवा दें?
1: सर मैं लाहौर शाहबाग से मोहम्मद रवीद बात कर रहा हूँ।
0: कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी?
1: जी दम खुश थे, हर दम खुश जी। आप सुनाएं क्या हाल है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह ताला का बहुत करम है। क्या कहना चाहेंगे, ईद के हवाले से तैयारियाँ मुकम्मल हो रही है आपकी?
1: जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सारी कुर्बानी देने के लिए गए, वैसे अभी आए हैं तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा हुआ।
0: तो क्या खरीदा आपने?
1: सर माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने जो नसीब में किया जो लेके आए, एक बच्चा लेके आए और दो बकरे लेके आए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अच्छा ये बच्चा जो है वो कितने का मिला आपको?
1: सर वो मिला 380 का।
0: 380 का? वैसे आप क्या समझते हैं कि रेट्स काफी ज्यादा हाई नहीं हो गए हैं?
1: सर बस रेट तो है लेकिन वो देखे ना, जो इतनी दूर से लोग लेके आए हुए हैं उनकी भी तो कोई मजबूरी है ना।
0: ये मैं आपको एक चीज मैं एक और जो है वो अवेयर करते चलूं, ये जो सेल करने वाले होते हैं मोस्टली वो लोग नहीं होते कि जो जिन्होंने पाले हुए होते हैं, ये थर्ड पार्टी जो है ना, ये जो तीसरा जो मिड मैन होता है ना वो पैसे ज्यादा कमाता है। अगर आप जहाँ पे जिन लोगों ने रखे हुए हैं ना गाँव के इलाके में या दूर दराज से जहाँ से लोग लेके आते हैं, अगर वहाँ से आप लोग लेके आए ना तो वहाँ से आपको अच्छे जो है वो रेट में जो है वो मिल जाते हैं। ये जो बीच वाला जो बंदा होता है ना ये सारे पैसे जो है वो कमा रहा होता है आपसे भी और जिसका एक्चुअल है उससे भी।
1: वो तो आपकी बात ठीक है लेकिन सर देखिए ना, छोटी सी मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी गांव से भी लेके आते हैं तो
0: फिर
1: ठीक है ना?
0: फिर आप एक नहीं लेके आएंगे, ये मैं आपसे उसकी चीज की मैं गारंटी देता हूँ। फिर आप एक नहीं लाएंगे, फिर आप अपने आस पड़ोस क्योंकि हम भी समटाइम लेके आते हैं तो 2 से 3 हम इकट्ठे ही लेके आते हैं, जिसमें हमें वो जो कैरेज वगैरह है ना वो बहुत कम पड़ता है उसमें।
1: जी जी हाँ ये तो आपकी बात ठीक है, मैं इस बात पे तो एग्री करता हूँ, आप सही बात कह रहे हैं।
0: तो वो एकदम से ना वो बेतुके से रेट वो बताना शुरू कर देते हैं, मतलब जाते साथ ही आप देखें हाँ जी 6 लाख, अब उसके साथ कितने आप बार्गेनिंग कर लेंगे।
1: हाँ ये तो है लेकिन मंडी है ना सर, देखें जैसे कि किस्मत में कोई चीज होगी तो जिसकी चीज में लिखा होगा तो वो आप तो एक नहीं ना, वो वहाँ पे कौन सा एक खड़ा होता है
0: मतलब, और उससे ज्यादा और उससे ज्यादा हम तो मतलब ये तो रेडियो टीवी तो एक अलग वो है, इतनी परमिशन नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया है ना उसने बहुत ज्यादा हाइप जो है वो बना दिया है। लोग जाते हैं मोबाइल निकालते हैं हाँ जी इतना इतना, वो करते करते ना वो लोगों के जुबान पे इतने लंबे लंबे रेट्स ऐसे ही आने शुरू हो गए।
1: हाँ मैं तो सर ये बात करना चाहूंगा, देखिए ये पहले किसी आज से ना 10-12 साल पहले मेरी मात्र 36 साल उम्र है, लेकिन लोगों की पहुंच से इतनी दूर कुर्बानी ये चीज नहीं थी।
0: बिल्कुल ऐसी है,
1: हो चुकी है।
0: बिल्कुल ऐसी है,
1: बस वही बात है ना, वो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अल्लाह पाक हर एक
0: तौफीक दे जाए
1: नसीब अच्छे करे। लेकिन ये जो हमारे माशाल्लाह तो बड़े बड़े लोग हैं ना साहिबान है, इनको भी सोचना चाहिए कि जो उनको पता ना कि गाड़ी में आएंगे हमें मुंह मांग कीमत मिलेगी, हमने उनको गाड़ी में रख के भिजवा देना, चलो जी भाई वो उनका भी काम हो गया, उनका भी काम हो गया।
0: तो
1: पूरा साल पैसे इकट्ठे किए होते हैं हर चीज के लिए, क्या बजट निकाला होता है तो उनसे तो ज्यादा ये काम आउट रेंज से बाहर हो जाता है ना काम।
0: बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है, ठीक है।
1: ये ट्रेड करना ये लेना देना चीज ये तुम्हारे तभी पार्टी सुनना तो भी है ना।
0: बिल्कुल बार्गेनिंग जो है वो आप बहस कर सकते हैं इसमें, खरीद और फरोख्त में जो है वो बहस करनी चाहिए, लेकिन अब देख लें कि 6-7 में आप उसके साथ कितनी बहस कर लेंगे, फिर भी उसको उसमें मार्जिन तो ठीक ठाक है।
1: जी ऐसे ही ऐसे मैं तो कर सर यही कहता हूँ कि अब तो चलो हम तो लोग शहर में रहने वाले हैं, अगर कहीं गांव में होते तो छोटे छोटे जानवर लेके तो मजा भी उसी का जो हम खुद पाले तो साल बाद उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करें तो हमारे दिल के अंदर भी जो है ना कोई खिंचाव महसूस होना चाहिए कि यार हम किसी को कुर्बान कर रहे हैं, असल कुर्बानी तो इसी का नाम है ना।
0: बिल्कुल ऐसे सही बजा फरमाया आपने
1: जी, मैं तो सुनने वालों को जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी सब करेंगे लेकिन कुर्बानी के साथ अपनी ना को भी कुर्बान करें, अपनी मैं को भी।
0: आपने एक ऐसी बात कर दी, मेरे ना काफी अरसे पहले मैंने एक बात सुनी थी और लास्ट ईयर भी मुझे याद है मैंने शामिल की थी कि ये जो पूरा कुर्बानी का सिलसिला ना, एक बाप बेटे की पूरी कहानी है। और आजकल के दौर में आप देख लें कि आप अपने वालिद से नाराज हैं, लेकिन आपने कुर्बानी करनी है।
1: सर वो देखें, जब माँ बाप ही नाराज हुआ तो फिर वो अल्लाह ताला तो कैसे खुश हो सकता है, लेकिन सोचने वाली बात है ना।
0: ऐसे ही है। तो सबसे पहले अपने बड़ों को राजी करें, बाकी जिंदगी में अल्लाह ताला आपके हर अमल को कबूल करेगा।
1: जी मैं सर आपको मजेदारी की बात बताऊं, मैं सर जाहिर तो नहीं करना चाहता था आपसे, लेकिन मैं इसलिए आपसे कर रहा हूँ कि माशाल्लाह मेरी 36 साल उम्र है, मुझे 20 साल हो गए हैं इस्तेमाल हो गए। हम हर साल कुर्बानी करते हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें हिम्मत दी, अल्लाह पाक हर एक को हिम्मत दे। लेकिन
0: आमीन।
1: जितने साल भी हो गए हम भाई से कुर्बानी नहीं करवाते, मेरे वाले साहब खुद माशाल्लाह तकबीर करते हैं, तो हम खुद खुद ही रल मिल के सारे रिश्तेदार कजन वगैरह हम खुद ही घर में करते हैं जो भी करते हैं।
0: ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है,
1: ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज, सब
0: अल्लाह
1: ध्यान
0: हाफिज जी।
1: रखना
0: यस
1: और आपकी आवाज आ रही है, सब
0: yes,
1: सुनो,
0: म्यूजिक।
1: थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया।
2: एंड देन देयर्स मैजिक वन अबव FM 101।
3: दिस इज FM 101।
4: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
5: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
4: आपा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
6: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
7: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
6: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
8: मतवाजन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
9: FM 101 naal naal sade te naal naal tuade kyun ji koi shak hai kya

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: There's music, and then there's magic. One above FM 101.
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। आज मुश्किल था संभालना है दोस्त, तुम मुसीबत में अजब याद आया। दिन गुजरा था बड़ी मुश्किल से, फिर तेरा याद आए शब याद आए। हाले दिल हम भी सुनाते देखें।

हाले दिल हम भी सुनाते लेकिन हाले दिल हाले दिल हम भी सुनाते लेकिन जब वो रुखसत हुआ तब याद आया।

शौला था जल बुझा हूँ। के मोहब्बत को पीठ नहीं दिखाते तुम तो इश्क हो मेरा। कि इश्क होता है ना किया जाता है, ये तो बस किया जाता है उस नसीब वाले को जिसके पास सवाल हो ना जवाब। जना दिन देखे ना रात, जिसे मिलन की फिक्र ना जुदाई का डर। आशिक के दिल में आग होती है ना रात,

दिल कहता है हमेशा तेरा एहतराम रहे, तेरा सबसे अलग मकाम रहे, मेरी सोच जहां भी रहे दुनिया में, मेरी सोच जहां भी रहे दुनिया में, मगर मेरा दिल फकत तेरे नाम रहे।

एक वादा है किसी का जो वफा नहीं होता, एक वादा है किसी का जो वफा होता नहीं, वरना इन तारों भरी रातों में हौसला करते हैं लेकिन हौसला होता नहीं।

अब वक्त का ना जी आप लोगों से इजाजत भी लेनी है और शायद कि ये भी मुलाकात हो या ना हो, अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। और अच्छे से इस मोमेंट को गुजारिएगा और कोशिश करें कि जिंदगी में आपके अगर कोई नाराज है तो बहुत बड़ा दिन है ये, कि शायद फिर मुलाकात हो ना हो, क्योंकि हमने अपने खोए हुए हैं सच में। और इस दिन में खोए हैं कि जिस दिन लोग अपनी मसरूफियात में होते हैं। तो अब ईद ऐसी ही आती है,

फिर कुछ और नहीं हूँ, मेरा अपना भाई है। तो बहुत एक अजीब सी एक कैफियत हो जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जाने अनजाने में अगर कोई भी बात आपके समाह राशि का सबब बनी हो तो माजरत चाहेंगे, माफ़ कीजिएगा। इंसान है, इंसान होने के नाते गलती हो सकती है, लेकिन कतन मकसद नहीं होता कि आप लोग हर्ट हों। लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा था कि यहीं पे बैठे हुए हम सारे दोस्त एक शो में बात कर रहे थे कि जिशान नासिर थे, मैं था, आतिर भाई थे, शाहनवान थे, कि कल की जो दावत है वो हम मेरी तरफ से, और यहाँ पे हम, और मैं ना आ सका क्योंकि मेरा अपना नहीं था यहाँ पे। जिंदगी शर्त है, जिंदगी ने वफा की, तो माइक्रोफोन की जानिब से आपसे फिर हम मिलेंगे किसी प्रोग्राम किसी ट्रांसमिशन में, लेकिन जिंदगी शर्त है। आई हैड अ वंडरफुल टाइम। अगली मरतबा जब आपसे मुलाकात होगी, जब भी मुलाकात होगी, होपफुली एक नए अजम के साथ, और भूले नहीं होंगे आप। लेट्स प्रूव इट, या आपने साबित करके दिखाना, यू डोंट हैव अ शॉर्ट मेमोरी। तन्हाई से छुटकारा पाने को अपनाया था तुम्हें, मुकद्दर है ये तन्हाई, ये ना मालूम था हमें, करके तन्हाई में तुमसे कुछ मीठी मीठी बातें, अकेले में होना है ये महसूस करने का तुम्हें, आ जाना मिटा जाना इस तन्हाई को, कि फिर से दावत हम देते हैं तुम्हें। अल्लाह हाफिज़।

तू सितारों से बहुत दूर है, मैं जानता हूं। तू सितारों से बहुत दूर है, मैं जानता हूं। अपनी मखलूक से मस्तूर है, मैं जानता हूं। लेकिन एक राज से आगाह किए देता हूं, मैं शनासा हूं तेरा, मैं तुझे जानता हूं। मैं शनासा हूं तेरा, मैं तुझे जानता हूं। मैंने मासूम बहारों में तुझे देखा है, मैंने मोहूम सितारों में तुझे देखा है। मेरे महबूब तेरी पर्दा नशीनी की कसम, मैंने इश्कों की कतारों में तुझे देखा है, मैंने इश्कों की कतारों में तुझे देखा है।

मेरा साथ देते रहिएगा, अपने होने का एहसास दिलाइएगा। खूबसूरत सा ट्रैक शामिल करने जा रहा हूँ, शॉर्ट सा ट्रैक है, ऐसे लोड कराता हूँ तो गुफ्तगू का सिलसिला बांधेंगे, सुनते रहिए।

ये किस तरह याद आ रही हो, ये ख्वाब कैसा दिखा रही हो, कि जैसे सचमुच निगाह के सामने खड़ी मुस्कुरा रही हो। ये जिस्म नाजुक ये नरम बाहें, हसीन गर्दन से डोल बाजू, शगुफ्ता चेहरा सलोनी रंगत, घनेरा जूड़ा स्याह गेसू, नशीली आंखें रसीली चितवन, दराज पलकें महीन अबरू, तमाम शोखी तमाम बिजली, तमाम मस्ती तमाम जादू, हजारों जादू जगा रही हो, ये ख्वाब कैसा दिखा रही हो। गुलाबी लब मुस्कुराते आरिज, जबी कुशादा बुलंद कामत, निगाह में बिजलियों की झिलमिल, अदाओं में शबनमी लताफत, धड़कता सीना महकती सांसें, नवा में रसखड़ियों में अमृत, हमा हलावत हमा मलाहत, हमा तरन्नम हमा नजाकत, लचक लचक गुनगुना रही हो, ये ख्वाब कैसा दिखा रही हो। भड़कते शोलों कड़कती बिजली से मेरा खुरमन बचा ही लोगी, घनेरी जुल्फों की छाओ में मुस्कुरा के मुझको छुपा ही लोगी, कि आज तक आजमा रही हो, ये ख्वाब कैसा दिखा रही हो। नहीं मोहब्बत की कोई कीमत, जो कोई कीमत अदा करोगी, वफा की फुर्सत ना देगी दुनिया, हजार अज़्में वफा करोगी, मुझे बहलने दो रंजो गम से, सहारे कब तक दिया करोगी, मुझे बहलने दो रंजो गम से, सहारे कब तक दिया करोगी। जुनून को इतना ना गुदगुदाओ, पकड़ लू दामन तो क्या करोगी, करीब बढ़ती ही आ रही हो, ये ख्वाब कैसा दिखा रही हो, ये ख्वाब कैसा दिखा रही हो, ये किस तरह याद आ रही हो, ये ख्वाब कैसा दिखा रही हो, कि जैसे सचमुच निगाह के सामने खड़ी मुस्कुरा रही हो। ये जिस्म नाजुक ये नरम बाहें, हसीन गर्दन से डोल बाजू, शगुफ्ता चेहरा सलोनी रंगत, घनेरा जुड़ा स्याह गेसू, नशीली आंखें रसीली चितवन, दराज पलकें महीन अबरू, तमाम शोखी तमाम बिजली, तमाम मस्ती तमाम जादू, हजारों जादू जगा रही हो, ये ख्वाब कैसा दिखा रही हो।

मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं? मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं? पूछकर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं? चार दिन की ये रफाकत जो रफाकत भी नहीं, उम्र भर के लिए आजार हुई जाती है। चार दिन की ये रफाकत जो रफाकत भी नहीं, उम्र भर के लिए आजार हुई जाती है। जिंदगी यूं तो हमेशा से परेशान सी थी, अब तो हर सांस गिरा बार हुई जाती है। मेरी उजड़ी हुई नींदों के शबिस्तानों में तू किसी ख्वाब के पैकर की तरह आई है। कभी अपनी सी कभी गैर नजर आई है, कभी इखलास की मूरत कभी हर जाई है। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या ना करूं, तुझे प्यार करूं या ना करूं। तूने खुद अपने तबस्सुम से जगाया है जिन्हें, उन तमन्नाओं का इजहार करूं या ना करूं। तू किसी और के दामन की कली है, लेकिन मेरी रातें तेरी खुशबू में बसी रहती हैं। तू किसी और के दामन की कली है, लेकिन मेरी रातें तेरी खुशबू से बसी रहती हैं। तू कहीं भी हो, कहीं भी हो, तेरे फूल से आरिस की कसम, तेरी पलकें मेरी आंखों पे झुकी रहती हैं। तेरे हाथों की हरारत तेरे सांसों की महक, तेरे हाथों की हरारत तेरे सांसों की महक, तैरती रहती है एहसास की पहनाई में, ढूंढती रहती है तखयल की बाहें तुझको, सर्द रातों की सुलगती हुई तन्हाई में। तेरा अल्ताफ करम एक हकीकत है, मगर ये हकीकत भी हकीकत में फसाना ही ना हो। तेरी मानूस निगाहों का ये मोहतात पयाम दिल के खून करने का एक और बहाना ही ना हो। कौन जाने मेरे इमरोज का फरदा क्या है, कौन जाने मेरे इमरोज का फरदा क्या है। कुर्बतें बढ़ के पशेमान भी हो जाती हैं, दिल के दामन से लिपटती हुई रंगीन नजरें देखते देखते अनजान भी हो जाती हैं। मेरी दरमांदा जवानी की तमन्नाओं के मुजमहिल ख्वाब की ताबीर बता दे मुझको, मेरा हासिल मेरी तकदीर बता दे मुझको, मेरा हासिल मेरी तकदीर बता दे मुझको।

मेरा नाम है आतिर अली सैयद और मुसाफत शब FM 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप रेडियो पाकिस्तान का इस्लामाबाद स्टेशन, जिसकी बराह रास्त नशरियात आपकी खूबसूरत समाहतों की नज़र कर रहा हूँ। टेलीफोन लाइंस अब आपके लिए खोल दी गई हैं, 9202540920254 नंबर है, आप शिरकत कर सकते हैं प्रोग्राम में टेलीफोन कॉल्स के जरिए, और इसके साथ साथ अपने पैगाम पहुंचाइएगा 4471 यानी 4471 पर। पैगाम के आगाज में आपने 101 यानी 101 लिखना है तो ही आपका पैगाम मुझ तक पहुंचेगा।

मोहब्बतें और मोहब्बत, वो जज्बा जो एक वक्त में दो इंसानों पर या हमा वक्त वारिद हुआ करता है। कोई पास रखता है और कोई बस जाने देता है। चलो कुछ देर हंसते हैं मोहब्बत पर, मोहब्बत पर, इनायत पर के बेबुनियाद बातें हैं। सभी रिश्ते सभी नाते जरूरत की इजादे हैं। कहीं कोई नहीं मरता किसी के वास्ते जाना, कि सब है फिर लफ्जों का है सारा खेल हरफों का। न है महबूब कोई भी, सभी जुमले से कसते हैं। चलो चलो कुछ देर हंसते हैं।

चलो कुछ देर हंसते हैं मोहब्बत पर, इनायत पर, कि बेबुनियाद बातें हैं सभी रिश्ते सभी नाते, जरूरत की इजादें हैं, कहीं कोई नहीं मरता किसी के वास्ते जाना, कि सब है फिर लफ्जों का है सारा खेल हरफों का, न है महबूब कोई भी सभी जुमले से कसते हैं, चलो कुछ देर हंसते हैं, जिसे हम जिंदगी कहते जिसे हम शायरी कहते, गजल का काफिया था जो उनवान नज्मों का, वो लहजा जब बदलता था कयामत खेज लगता था, वक्त से आगे चलता था बला का तेज लगता था, जो साया बन के रहता था जुदा अब उसके रस्ते हैं, चलो कुछ देर रोते हैं, चलो कुछ देर हंसते हैं, चलो कुछ देर हंसते हैं।

हम नगमा सरा कुछ गजलों के, हम सूरत गर कुछ ख्वाबों के, बेजज्बा शौक सुनाए क्या, कोई ख्वाब ना हो तो बताए क्या।

रुदादे मोहब्बत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए। दो दिन की मुसर्रत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए। दो दिन की मुसर्रत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए। जब जान दिया था साकी ने, जब दौर चला था महफिल में, एक होश की साथ क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए। अब वक्त के नाजुक होंठों पर मजरूह तरन्नुम रकसा है, बेदाद नशीयत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए। एहसास के मैं खाने में कहां फिक्र नजर की कंदीले, आलाम की शिद्दत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए। कुछ हाल के अंधे साथी थे, कुछ माजी के अय्यार सजन, अहबाब की चाहत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए। कांटों से भरा है दामन दिल, शबनम से सुलगती हैं पलकें, और कांटों से भरा है दामन दिल, शबनम से सुलगती हैं पलकें। फूलों की सखावत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए। अब अपनी हकीकत भी सागर बेरब्त कहानी लगती है, दुनिया की हकीकत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए। कुछ हाल के अंधे साथी थे, कुछ माजी के अय्यार सजन, अहबाब की चाहत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए।

0: एक और कॉल लेते हैं और फिर कुछ गुफ्तगु का रब्त बांधने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह
0: जनाब।
1: नज़ीर की आनी बोल रहा हूँ।
0: ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक है जनाब,
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप खैरियत से हैं?
0: अच्छा अच्छा हूँ जनाब, अच्छा हूँ। क्या कहिएगा हुज़ूर?
1: मैंने कहा इस पैर भी आपका होना अंग्रेज मिल रहा है तो इससे साबित होता है कि आपको चाहने वाले बहुत ज्यादा।
0: अच्छा, सलामत सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे।
1: माशाल्लाह, अंदाज भी अच्छा है। शायद इस काबिल ही नहीं है कि आपको कुछ कह सकें।
0: आपकी जरा नवाजी हजूर।
1: कम कम से आदमी है लेकिन अच्छा लगता है आपको।
0: सलामत रहे, सलामत रहे।
1: और चाहे शायर अगर इजाजत दें।
0: जी जी हजूर, इरशाद।
1: इश्क हमें बर्बाद न कर। इश्क हमें बर्बाद न कर, दिल तोड़ के मन का नीत किया। हम हार गए, गम जीत गया। खुशियों का जमाना बीत गया। खुशियों का जमाना याद न कर। इश्क हमें बर्बाद।
0: बात अच्छा।
1: क्यों रोते हैं दो दीवाने, बेदर्द जमाना क्या जाने। बेदर जमाना किया दिल बात न कर। इश्क हमें बर्बाद।
0: वाह, बहुत अच्छा।
1: पहले तो कफ्स में कैद किया, याद ने फिर ये हुक्म दिया। अश्कों को पी, ओंठों को सी, आहें न भर, फरियाद न कर। इश्क हमें बर्बाद न कर।
0: बहुत अच्छा,
1: शुक्रिया जी,
0: सलामत रहिए जनाब। इसके बहुत सारे बंद हैं आपने जो है
1: वो, बस वो हाँ, मुझे जो याद थे वो।
0: हाँ, बहुत अच्छे आपने उनका इंतखाब किया। सलामत रहिए जनाब, सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।

मुसीबतें सर बरहना होंगी, अकीदतें बेलिबास होंगी। थके हुओं को कहां पता था कि सुबह यूं बदहवास होंगी। मुसीबतें सर बरहना होंगी, अकीदतें बेलिबास होंगी। थके हुओं को कहां पता था कि सुबह यूं बदहवास होंगी। तू देख लेना हमारे बच्चों के बाल जल्दी सफेद होंगे। हमारी छोड़ी हुई उदासी से सात नस्लें उदास होंगी। कहीं मिलें तुमको भूरी रंगत की गहरी आंखें मुझे बताना। मैं जानता हूं कि ऐसी आंखें बहुत अजियत शनास होंगी। और मैं सर्दियों की ठिठरती शामों के सर्द लम्हों में सोचता हूं, वो सुर्ख हाथों की गर्म पोरें न जाने अब किसको रास होंगी। ये जिसकी बेटी के सर की चादर कई जगह से फटी हुई है, तुम उसके गांव में जाके देखो तो आधी फसलें कपास होंगी। तो देख लेना हमारे बच्चों के बाल जल्दी सफेद होंगे। हमारी छोड़ी हुई उदासी से सात नस्लें उदास होंगी। हजूर, ये जो कैफियत हुआ करती हैं, इनमें हम इंसानों का बस होता नहीं है। ये कैफियत तारी हो जाया करती हैं। हर इंसान की एक अपनी सकत है, एक अपनी सलाहियत है बर्दाश्त करने की। जैसा कि एक तिनके पर बैठी हुई एक चूंटी के लिए बारिश का एक कतरा उसकी कयामत है, हम कोई कुलिया लगा नहीं सकते हैं मुसीबतों पर, परेशानियों पर, तकालीफ पर। हम हद नहीं लगा सकते हैं कि ये तकलीफ है और ये तकलीफ नहीं है। कोई शय जो हम बर्दाश्त कर लिया करते हैं किसी और के लिए, शायद वो नाकाबिले बर्दाश्त हो। जो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसर्रत हुआ करती है, शायद किसी और के लिए उसकी कोई वक़्त ही ना हो। हम इंसान जो इस दुनिया में भेजे गए और हमें यह भी बता दिया गया कि जजा और सजा का मामला भी होगा, इरादा और इख्तियार भी दे दिया गया, और फिर उसके साथ साथ ये कैफियत भी दे दी गई। हमें मोहब्बतों से भी आशना कर दिया गया, हमें बता दिया गया कि नफरत क्या होती है, यह भी बता दिया कि हसद क्या होता है, यह भी बता दिया कि हसरतें क्या होती हैं, यह भी बता दिया कि उम्मीद क्या हुआ करती है, और यह भी बता दिया गया कि सितम क्या होते हैं। और हर इंसान को मुख्तलिफ तरह से यह सब कुछ सिखाया गया। बहुत कुछ तो ऐसा है जो हमारी जात के अंदर वदियत है, बहुत कुछ मुंजमद है हमारी जात के अंदर, और ये वक्त के थपेड़े, वक्त की तमाजत उसको पिघलाती है, तो हमें मालूम पड़ता है कि हाँ, ये जज्बा भी है, ये कैफियत भी है, हमें इससे भी दो चार होना है। और अक्सर कहा करता हूं कि बहुत सख्त जान हो जाते हैं हम इंसान, जिस कयामत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, वो गुजर भी जाया करती है और सह लिया करते हैं। सह सह जोड़ संगत दे वेखे ते आखिर विथा पईयां, जिना बिना एक पल सी ना लंघदा, वो शक्लां याद ना रहियां। मसलहत शनास हुआ करते हैं हम इंसान, और देखा जाए तो तलाश सबको सुकून की है। बस एक ही शय है इत्मीनान, सुकून, उसी की दौड़ में है हर इंसान। जो कर रहा है उसी के लिए कर रहा है, लेकिन ये सितम आ जाया करते हैं, और खास करके मामला मोहब्बतों का हो तो शायर क्या खूब कहता है कि
پیجہ ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہم اپنی ذات کے اندر ایک تمکنت محسوس کرتے ہیں جب کچھ برداشت کر لیا کرتے ہیں، جب کچھ سہ لیا کرتے ہیں۔ اکثر ہم ایسے جملے سنتے ہیں کہ ہم نے تو کیا کچھ دیکھ رکھا ہے، ہم نے کیا کچھ سہ رکھا ہے۔ جب انسان پر وہ بیت رہا ہوتا ہے، جب لمحے صدیوں پر محیط ہو رہے ہوتے ہیں، تب اس کی خواہش ہوا کرتی ہے کہ یہ وقت گزر جائے، ٹل جائے کسی طرح۔ لیکن جب اس وقت کو سہ لیا کرتا ہے تو پھر اپنی ذات کے اندر ایک غرور، ایک تمکنت محسوس کرتا ہے کہ میں یہ سہ سکتا تھا۔

और मोहब्बतें जैसी मासूम हुआ करती हैं। हम बसा लिया करते हैं मोहब्बतों को अपनी जात के अंदर, उनको छोटी छोटी अशिया से मंसूब कर देते हैं, कुछ सूखे फूल, डायरी में लिखे कुछ अशार, कोई एक मकाम, कोई खुशबू, कोई मौसीकी, पूरे साल में से कोई एक महीना, कोई एक मौसम, कोई एक बारिश, कोई एक तारीख, कोई एक खत हुआ करता है। ये सब कुछ हम अपनी जात के अंदर एक संदूक में संभाल कर रखते हैं, उसे एक खंडर कमरे में, जो मुकफ्फल रहता है हमारी जात के अंदर। और जब कभी हमें इस मसरूफ दुनिया में थोड़ा वक्त मयसर आ जाता है तन्हाई का, अपने साथ वक्त गुजारने का, तो हम उस मुकफ्फल संदूक को खोला करते हैं, इन अशिया को छू कर देखते हैं, महसूस करते हैं, और अपने सामने बिखेर कर अपनी उंगलियों की पोरों को जख्मी कर लिया करते हैं उन यादों से, उन सूखे फूलों से, उस मौसीकी से, उस एक खुशबू से। कैसी अजीब बात है कि वो इंसान जो इत्मीनान की तलाश में हुआ करता है, सुकून की तलाश में हुआ करता है, उसको ये छोटी छोटी बेनाम सी अजियतें अच्छी लगने लग जाती हैं, वो इनको महसूस करना चाहता है और करता है। ये छोटे छोटे सितम न जाने क्यों उसको भाने लग जाते हैं, शायद अपनी जात के अंदर उस तमकिनत को महसूस करने के लिए, उस गुरूर को महसूस करने के लिए, जो कुछ सह लेने के बाद हम इंसान महसूस किया करते हैं। जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नू चुल्ले डावा। अजीब फितरत हुआ करती है हम इंसानों की इन मोहब्बतों के मामले में, जब सितम, जब अजियतें अच्छी लगने लग जाती हैं। हिजर की उम्र बढ़ी है तो हम इन आंखों को अब किसी ख्वाब नगर में नहीं जाने देंगे। हिजर की उम्र बढ़ी है तो हम इन आंखों को अब किसी ख्वाब नगर में नहीं जाने देंगे। गम से अब दोस्ती कर लेंगे, खुशी को नहीं आने देंगे। हिजर के वक्त में अहवाले शब रोज का क्या पूछते हो, इसमें साथ भी जमानों से बड़ी होती है। दिन खड़ा होता है जल्लाद की मानिंद सभी रातों पर, दिन खड़ा होता है जल्लाद की मानिंद सभी रातों पर, रात डायन की तरह वक्त के नाके में अड़ी होती है। हिजर के साथ में वो कहर है, जीना भी गिरा और ना जीना मुश्किल। हिजर के हाथ में वो जहर है, पीना भी मुहाल और ना पीना मुश्किल। हिजर दरवेश नहीं, हिजर कमंदेश नहीं, हिजर नहीं पीरे मुगा, हिजर अय्यार है, दुनिया का तलबगार है, अब तक है जवां। हिजर अय्यार है, दुनिया का तलबगार है, अब तक है जवां। हिजर की उम्र बढ़ी है तो चलो हम खुद ही ये नक्श सब दिल से मिटा लेते हैं, हाथ जीने से उठा लेते हैं। हिजर की उम्र बढ़ी है तो चलो हम खुद ही नक्श सब दिल से मिटा देते हैं, हाथ जीने से उठा लेते हैं।

जिंदगी की आंखों से अश्क बन के बह जाए। चाहे अब मकीनों पर घर की सारी दीवारें छत समेत गिर जाएं और बेमुकद्दर हम इस बदन के मलबे में खुद ही क्यों ना दब जाएं। तुमसे कुछ नहीं कहना, तुमसे कुछ नहीं कहना। कैसी नींद थी अपनी, कैसे ख्वाब थे अपने, और अब गुलाबों पर नींद वाली आंखों पर नरम खूस ख्वाबों पर क्यों अजाब टूटे हैं, क्यों अजाब टूटे हैं। तुमसे कुछ नहीं कहना। घिर गए हैं रातों में बेलिबास बातों में, इस तरह की रातों में कब चिराग जलते हैं, कब अजाब टलते हैं, कब अजाब टलते हैं। अब तो इन अजाबों से बच के भी निकलने का रास्ता नहीं जाना, अब तो इन अजाबों से बच के भी निकलने का रास्ता नहीं जाना। जिस तरह तुम्हें सच के लाजवाल लम्हों से वास्ता नहीं जाना, जिस तरह तुम्हें सच के लाजवाल लम्हों से वास्ता नहीं जाना। हमने सोच रखा है तुमसे कुछ नहीं कहना। चाहे दिल की हर ख्वाहिश जिंदगी की आंखों से अश्क बन के बह जाए, तुमसे कुछ नहीं कहना।

0: ये सर न झुकाया मैंने।
1: वाह वाह वाह बहुत।
0: और इसमें एक शेर था कि तुझसे शर्मिंदा हूँ दो वक्त की रोटी के लिए,
1: तुझसे शर्मिंदा हूँ दो वक्त की रोटी के लिए,
0: जिंदगी तुझको बहुत नाच नचाया मैं।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह बहुत अच्छा।
0: जिंदगी तुझको बहुत नाच नचाया। एक दो शेर की आप इजाजत दें तो मेरा दिल कर रहा है इनके
1: जी। इरशाद इरशाद इरशाद।
0: वो असीफ सोह साहब ने कहीं कहा था कि कोई कोई तो सरासर बुराई देने लगा।
1: वाह।
0: कोई तो सरासर बुराई देने लगा कि जब से कानों को ऊंचा सुनाई देने लगा।
1: क्या बात है क्या बात है।
0: एक आप तेवर को देखिएगा इस दो तीन शेर है इस गजल के कि कोई कोई तो सरासर बुराई देने लगा।
1: वाह वाह वाह।
0: जब से कानों को ऊंचा सुनाई देने लगा और उसे खबर ही नहीं कि उसकी एक हरकत ने उसे खबर ही नहीं कि उसकी एक हरकत से छुपा हुआ था जो उसमें दिखाई देने लगा।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
0: आप शेर मुलाहिजा कीजिए कि किसी पे हाथ उठाकर मैं उठ गया इतना। जुबान देखें कि किसी पे हाथ उठाकर मैं उठ गया इतना कि पूरा गांव मुझे चारपाई देने लगा।
1: ओए होए बहुत अच्छे।
0: और ये शेर उन तमाम उन वालदैन के नाम, अल्लाह सबके बच्चों को काबिल रखे, माँ बाप का फरमा बरदार रखे कि खुदा का शुक्र के शाखों पे फूल आए।
1: खुदा का शुक्र के शाखों पे फूल आए।
0: खुदा का शुक्र के शाखों पे फूल आए, हमारे हाथ में बेटा कमाई देने लगा।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह बहुत अच्छे जी बहुत अच्छे।
0: थैंक यू सर। थैंक यू। जज़ाकअल्लाह।
1: सलामत रहिए सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।

0: امجد صاحب کہتے ہیں کہ امجد بہت سی خواہشیں ہیں دل میں بے قرار، امجد بہت سی خواہشیں ہیں دل میں بے قرار، لیکن کہاں سے لاؤں وہ بے فکر زندگی. ان خواہشات پر ہمارا زور ہوا نہیں کرتا، ہم انسان بڑے بے بس ہوا کرتے ہیں. اور پھر وہ بے بسی اشعار میں اب نظموں میں بیان کر دیا کرتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: انیلا لاہور سے.
0: کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟
1: جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور دعا گوں جو جو سن رہے جہاں جانا سب کو سلامت رکھے.
0: وعلیکم آمین.
1: آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے اسپیشلی بہت سی دعائیں.
0: بہت شکریہ، بہت شکریہ، سلامت رہیے.
1: تھینک یو. اچھی گفتگو، اچھا پروگرام. حبیب نیز بڑی خوبصورت پڑھ کے گئے. سمندر تھا کسی کو بتایا نہیں میں نے کچھ ایسے ہی انہوں نے پڑھا، بہت خوبصورت پڑھ کے گئے. ابھی آپ نے جو اس سے ان کی کال سے پہلے آپ نے ایک تو جو پڑھی ہو بڑی خوبصورت تھی، مجھے لگتا ہے یہ شاید آپ نے پہلی بار پڑھی ہوں.
0: شاید ہو سکتا ہے،
1: ہے نا؟ ہاں پہلی بار پڑھی ہیں اپنے شو میں، اس سے پہلے میں نے سنی نہیں.
0: ٹھیک ہے،
1: آپ کو پڑھتے ہوئے آپ نے پہلی بار.
0: اس کا مطلب ہے آپ میرے سارے پروگرام سنتی ہیں.
1: الحمد للہ ریکارڈ بھی کرتی ہوں.
0: ٹھیک ہے، ٹھیک ہے،
1: سنتی ہوں. اور پھر آپ کی پڑھی ہوئی نظموں کو، غزلوں کو کبھی کبھی آ کے سناتی بھی ہوں.
0: صحیح صحیح، ٹھیک ہے.
1: ابھی آپ استاد ہیں، ہم شاگرد ہیں، ہم نے سیکھنا تو ہے نا. پیپر بھی تو دینا ہوتا ہے نا.
0: ایسا ہی ہے. نہیں میں آج آپ کی کوئی، میں کچھ بھی کسی بھی غلطی کو ہائی لائٹ نہیں کروں گا، آپ بے فکر ہو کے
1: سنائیے. اچھی بات ہے،
0: چلے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے،
1: سیکھنے کو اچھا ملتا ہے نا.
0: ٹھیک ہے، ٹھیک ہے.
1: اور یہ تو آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ اتنی محبت سے ساری چیزیں ہمیں بتاتے ہیں تاکہ ہمیں سیکھنے کو مل جاتا ہے.
0: سلامت رہے.
1: باقی آپ کو تو تیاری کی ضرورت نہیں ہے بھائی، کوڑنا بچھونا ہی شاعری ہے.
0: ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے.
1: چلیں کچھ پڑھنا چاہوں گی.
0: جی ارشاد، ارشاد.
1: ہنستے نہ مسکراتے تو چاندنی رات سسکیاں بھرتی، چاندنی رات سسکیاں بھرتی، تم ذرا اپنی چھت پہ آتے تو.
0: ٹھیک ہے.
1: کہتے اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں، آنا جانا تھا آتے جاتے تو.
0: واہ واہ واہ، بہت اچھا.
1: اور دوستی میں انا نہیں چلتی،
0: دوستی میں انا نہیں چلتی،
1: دوستی میں انا نہیں چلتی، خود نہ بلاتے کبھی آتے تو. سوری، ہاں یہی تھا.
0: ٹھیک ہے.
1: خود نہ بلاتے کبھی، خود نہ آتے کبھی بلاتے تو.
0: ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی بات ہے.
1: ہاں ایک ہی بات.
0: صحیح.
1: اور آ بھی جاؤ کہ ہم بلاتے ہیں، آ بھی جاؤ کہ ہم بلاتے ہیں، تم بلاتے جو ہم نہ آتے تو.
0: واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، ٹھیک ہے.
1: اور مانا کہ تم نے بہت کمایا ہے، مانا کہ تم نے بہت کمایا ہے، لیکن اس میں سے کچھ بچاتے تو.
0: اے خوش خرام پاؤں کے چھالے تو گن ذرا، تجھ کو کہاں کہاں نہ پھراتا رہا ہوں میں. اس شعر کا جواب ہے،
1: بہت زبردست جواب ہے، ویسے زبردست ہے. بہت خوب، بہت خوب. جیتے رہے، خوش رہے، سب کے لیے، سب آنے والوں کے لیے بہت سی دعائیں، اور جو نئے ہیں ان کے لیے ویلکم.
0: سلامت رہیے، آباد رہیے، بہت شکریہ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. عاطر بھائی کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟
0: بہت اچھا ہوں جی.
2: میں صدر محمد بات کر رہا ہوں، کراچی سے زرت کالونی والا.
0: ٹھیک ہے، سلامت رہیے. آپ اتنے انرجیٹک ہو کہ میرا پروگرام سن رہے ہیں، مجھے بہت اچھا لگ رہا
2: ہے. یار بس میں یہی بولنے والا تھا، میں تو بڑا سیڈ ہو گیا نا آپ کا شو سن کے. بہت سیڈ شو کرتے ہیں آپ.
0: ابھی تو میں نے سیڈ کیا ہی نہیں جناب، ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا.
2: میری
0: جسم میں
2: اس طرح
0: یہ ابھی آپ ڈاؤن انرجی کے ساتھ آئے ہیں حضور؟ मैंने कहा अभी आप ये डाउन एनर्जी के साथ आए हैं या आप एनर्जेटिक हैं? अच्छा ठीक है, क्या कहेंगे आप? ठीक है, लेकिन आप लोगों से मुझ पर कोई असर नहीं होता, आपकी कॉल बंद करने के बाद मैं वापस वैसे ही हो जाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चले और कुछ कहना चाहेंगे हुजूर? अभी शामिल करूंगा जनाब कुछ ही देर में, ठीक है। नहीं सॉन्ग नहीं मैं डेडिकेट करता हुजूर, उसके लिए अलग
2: प्रोग्राम।
0: सलामत रहिए, आबाद रहिए, बहुत शुक्रिया। एक और कॉल लेते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम कुलेशा साहब।
0: जनाब
3: हक नवाज बात कर रहा हूँ, रॉल पुटी।
0: ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक है,
3: मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। एक सेकंड शाह जी,
0: क्या
3: जी? एक्चुअली मैंने दो दो पंखे चलाए हुए हैं, एक रूम कूलर है, एक ऊपर छत वाला।
0: ठीक है,
3: इसकी वजह से। हेलो
0: जी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है जनाब।
3: बिल्कुल ठीक आ रही है, थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो मैं हमीद गुल साहब को ट्रिब्यूट पे सलूट पेश करता हूँ।
0: ठीक है,
3: उन्होंने बहुत अच्छी शायरी लाई और बहुत अच्छा इंतखाब लाया।
0: ठीक है,
3: क्योंकि वो हमारे उस्ताद हैं। और दूसरा अरविंद शाकर साहब आई, सॉरी अनिला आपी आई, उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ा। अनिला आपी, मैं कहता हूँ आज आपने प्रोग्राम का जो है ना रंग जो है ना पूरा लूट लिया है।
0: अच्छा, आप क्या पढ़ेंगे?
3: अच्छा पढ़ा, यकीन जाने मैंने ऐसी कभी गजल कोई सुनी ही नहीं है।
0: अच्छा,
3: ऐसा क्या आज आपने पढ़ी है?
0: ठीक है,
3: और वो भी आतर भाई के सामने।
0: अच्छा,
3: आतर भाई प्रवीण शाकर साहब की गजल एक शेर अगर इजाजत हो तो।
0: जी इरशाद इरशाद।
3: फिर उसके बाद एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पूरी कर दें तो प्लीज। आप तक आए ने मेरी रिक्वेस्ट नहीं पूरी की।
0: ऐसा ही है, चलो सुनाइए आप शेर सुनाइए।
3: नुसरत फतेह अली खान की गजल फिर आपने चलानी है, आप ही चारों बदल जाएगी।
0: अच्छा,
3: चांदनी रात ढल जाएगी, ये ढूंढ ले आप।
0: जो मेरा प्रोग्राम सुनते हैं ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ हक नवाज साहब, जो मेरे रेगुलर लिसनर्स हैं ना, उनको पता है कि मेरा प्रोग्राम का एक रिदम होता है, और उस रिदम में मुमकिन ही नहीं होता कि मैं कोई ट्रैक शामिल कर सकूं किसी की फरमाइश पर। आप मेरे चहेते नहीं है हुजूर, मैंने आपको अपना चहेता नहीं होना। आप शेर सुनाए, आप लोग मुझे इतना हंसा देते हैं कि वापस मुझे उस कैफियत में जाने में फिर कुछ थोड़ा, अब मैं इसके बाद जरा अलग से।
3: प्लीज आज आपने चलानी है, मैंने किसी को सुनानी है, आप विचार उस बदल जाएगी।
0: चले वो अब मेरे
3: फैल गई बात,
0: मेरी बात सुने, वो आपने जिसको सुनानी है ना, और अगर मेरे जरिए सुनाएंगे तो फिर आप बीच में से निकल जाएंगे।
3: नहीं, नहीं, वो सुन रहा है, वो सुन लेगा। प्लीज आपने उसे सुनानी लाजमी है, आपको
0: दुआएं दीजिएगा। अच्छा चले, आप शेर सुनाए हुजूर, शेर सुनाए।
3: खूब खूब फैल गई बात शनास आएगी, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीर आएगी।
0: ठीक है,
3: वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाएगी।
0: ठीक है,
3: फैल गई बात शनास आएगी। मैंने तो सिर्फ रिक्वेस्ट करने के लिए आपको कॉल की है।
0: चले सलामत रहे, सलामत। मेरे जहन में और बहुत खुराफाती बातें आ रही हैं जो आपने अशआर सुनाए उनसे रिलेटेड भी, लेकिन मैं उस माहौल में नहीं जाना चाहता। सलामत रहिए जनाब, आबाद रहिए, बहुत शुक्रिया। तो जनाब एक कॉल और लेनी पड़ेगी क्योंकि मुझे उस कैफियत में वापस जाना है। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम।
0: ठीक है, कैसे हैं आप जनाब, कौन है, कहाँ से?
4: मोहम्मद नशीन कागान से बात कर रहा हूँ।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह जनाब, आप यादों में ले गए हैं मुझे, माजी में ले गए हैं।
4: 19/8/2024 की गजल मुझे याद आई।
0: अच्छा,
4: बुला लाओ उस बेवफा को कि कुछ रात कटे।
0: ठीक है,
4: ये
0: नासिर काज़मी साहब की
4: जबान से अदा हुए।
0: अच्छा अच्छा,
4: ये गजल बहुत पसंद आई मुझे।
0: अच्छा, उस आपने तारीख याद रखी
4: हुई, बेवफा को फिर से कि कुछ रात कटे।
0: ओए होए होए, आपने वो तारीख याद रखी हुई है जब मैंने ये पढ़ी थी गजल?
4: जी जी, 19/8/2024।
0: क्या बात है जनाब, क्या बात है।
3: 19/8/2024 रात 1:01 पर। अच्छा। ये टाइम मुझे भूल गया है।
0: अच्छा, ये ज्यादा हो गया
3: नहीं है, लेकिन बाकी तारीख मेरे पास मौजूद है। आपकी जितनी भी गजलें हैं ना, जितनी भी पढ़ी हैं 2024 से लेके 2026 तक, मेरे पास एक एक नोट है।
0: अच्छा, सलामत रहिए जनाब, आबाद रहिए।
3: तो हम अर्ज करते चलें कि आपको सुनने में दिलचस्पी तो है, लेकिन आपकी दराज उम्री की दवा भी है।
0: सलामत रहिए जनाब, सलामत रहिए, आबाद रहिए।
3: तो अर्ज ये है हजूर, लाश आशिक की वक्त ने भी हुरमत में पड़ी थी।
0: अच्छा,
3: लाश आशिक की मक्तले भी हुरमत में पड़ी थी।
0: मक्तले
3: बार था हर अपना बेगाना कोई। पूरी रात की बातें कहने लगे लोग, कैसी शम्मा थी कैसा था परवाना कोई।
0: वाह वाह वाह वाह वाह,
3: थे जुर्मुट में जनाब भी मौजूद, जिनके नैनों का निशाना था कोई।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
3: बोले आसम अली आतफ, छोड़ो जाने दो ये पागल दीवाना था कोई।
0: अच्छा, वाह वाह वाह, सलामत रहिए, सलामत रहिए, आबाद रहिए। बहुत अच्छा जनाब, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया।
3: तो सर ये खूबसूरत आवाज आपके मेरठ होने के बाद आई है या पहले भी थी?
0: किस क्या होने के बाद आई है,
3: यानी कि सिंगल तो डबल होने के बाद आई है या सिंगल में ये अंदाज है?
0: ये जनाब अभी था। चार दिन इंतजार करें, ईद के दिन ऐसा प्रोग्राम करेंगे हम, अभी मुझे मेरी कैफियत में जाने दें हुजूर। मैं टेम्पो लेके चल रहा हूँ, आप लोग उसको अब मैं कॉल नहीं लूंगा। सलामत रहिए जनाब, आबाद रहिए।
3: शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन ये सुना दीजिएगा 19/8/2024 की।
0: अभी सुनाता हूँ, आपकी कॉल के बाद सुनाता हूँ। सलामत,
3: रात कटे उस कटे, बेवफा को बुला लो कि कुछ रात कटे।
0: चलें ठीक है, ठीक है। सिर्फ रात कटे आपने याद रखा, लेकिन नासिर काजमी साहब का ये कलाम जरूर मुझे उस कैफियत में ले जाएगा जिससे जिसमें ये मुझे 3-4 कॉलर्स ने निकाल दिया। तो जनाब स्टूडियो की लाइट्स ऑफ करके एक छोटा सा ट्रैक भी इसके बाद शामिल करूंगा ताकि उस कैफियत में वापस आ सकूं।

दर्द कम होने लगा, दर्द कम होने लगा। आओ के कुछ रात कटे, गम की मैं याद बढ़ाओ के कुछ रात कटे। हिजर में आहो बुकार उसमें कौन है, लेकिन आज ये रस्म ही दोहराओ के कुछ रात कटे। और यूं तो तुम रोशनी या कल्ब नजर हो, लेकिन आज वो मौजजा दिखलाओ के कुछ रात कटे। दिल दुखाता है वो मिलकर भी, मगर आज की रात उसी बेदर्द को ले आओ के, उसी बेदर्द को ले आओ के कुछ रात कटे। दम घुटा जाता है अफसरदा दिली से यारो, कोई अफवाह ही फैलाओ के कुछ रात कटे। मैं भी बेकार हूं और तुम भी हो वीरान बहुत, दोस्तों आज ना घर जाओ के कुछ रात कटे। छोड़ाए हो सरे शाम उसे क्यों ना सिर, उसे फिर घर से बुला लाओ के कुछ रात कटे। दिल दुखाता है वो मिलकर भी, मगर आज की रात उसी बेदर्द को ले आओ के कुछ रात कटे। दर्द कम होने लगा, आओ के कुछ रात कटे। गम की मैं याद बढ़ाओ के कुछ रात कटे।

न किसी पे जख्म आया कोई, न किसी को फिक्र रफू की है, न किसी पे जख्म आया कोई, न किसी को फिक्र रफू की है, न करम है हम पे हबीब का, न निगाह हम पे अदू की है। सफ़े जाहिदा हैं तो बे यकीन, सफ़े मैं कशा हैं तो बेतलब, ना वो सुबह विरदो वजू की है, ना वो शाम जामो सबू की है, ना ये गम नया ना सितम नया कि तेरी जफा का गिला करें। ये नजर थी पहले भी मुस्तरिब, ये कसक तो दिल में कबू की है। कफे बागबां पे बहारे गुल का है कर्ज पहले से बेशतर, के हर एक फूल के पैरहन में नमूद मेरे लहू की है। नहीं खौफ रोजे से आ हमें, के है फैज जर्फ निगाह में। अभी गोशा गिर वो एक किरण जो लगन साइना रूकी है। सफ़े जाहिदा हैं तो बे यकीन, सफ़े मैं कशा हैं तो बे तलब, ना वो सुबह विरदो वजू की है, ना वो शाम जामो सबू की है।

साथ दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो न अपना था उसे टूट के चाहा हमने। एक धोखे में कटी उम्र हमारी सारी, क्या बताएं किसे पाया किसे खोया हमने।

अब खत्म।

0: कह दो कि मैं तो अपने परवरदिगार ही की इबादत करता हूँ और किसी को उसका शरीक नहीं बनाता।
1: قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا
0: ये भी कह दो कि मैं तुम्हारे हक में नुकसान और नफे का कुछ इख्तियार नहीं रखता।